परम सत्कार्य गुरु प्रसाद संगत जी। अरदास गुरसिख पास एक बहुत वड्डी शक्ति, एक बहुत वड्डी ताकत, एक बहुत वड्डी विल पावर है। किसी कार्य नूं आरंभ करना होवे तां वी अरदास, किसी काम नूं समाप्त करना होवे तां वी अरदास, किसी चीज की लोड़ होवे तां वी अरदास। इंज कह लो कि गुरसिख की अरदास गुरु नाल एक ऐसा संबंध है कि जो मंगना चाहे परमात्मा को ले सकता है। पर ख्याल करना, कईयां दा विश्वास टुट गया, कई गुरु नालों टुट गए, कईयां दी जबान ते गिला आ गया, शिकवा आ गया कि मैनू ते बड़ा चिर हो गया अरदास करदे आ, मेरी नहीं अरदास सुनी गई। आओ, दास ने यह प्रकरण तां आरंभ कीता कि सानू अरदास ते यकीन आ जाए। जिन्हां दी जबान ते यह गिला कि साडी अरदास कबूल नहीं होई, भाई मैं उन्हां नू यह गल कहनी चाहना हां, कमी साडे विच है, परमात्मा विच नहीं है। हो सकता है कि तू सही अखर अरदास दे वरते ही नहीं, जिवें अरदास करनी चाहिदी सी तू ओवें कीती नहीं, जिवें परमात्मा नू अरदास सुनानी सी तू ओवें सुनाई नहीं। इसलिए साध संगत आओ, अज आपां अरदास दी विधि सीख लईए। जे ते अरदास विधि अनुसार होवे कदी बिरथी नहीं जा सकती, पर जे सानू पता ही नहीं अरदास करनी किवें है ते खिमा करना, फिर गुरु ते शिकवा करन दी कोई लोड़ नहीं। कमी साडे विच है, गुरु विच नहीं है। तुछ बुद्धि अनुसार मैं गुरु दरबार वल्लों कुछ बाणी दे प्रमाण तुहाडे समक्ष रख रहे हां, जरा ध्यान नाल सुन लेना अरदास दी विधि की है। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते ने, अरदास एक 5 मिनट का कैप्सूल है, पहले ख्याल कर लेना, अरदास एक 5 मिनट का कैप्सूल है। इस 5 मिनट के कैप्सूल अंदर समुचा इतिहास सिख पंथ का बंद किया हुआ है। हुण इन 5 मिनटों के विच अरदास किवें करनी है ध्यान करना। सब तो पहले अरदास की विधि, आपे जाने करें आ

पानी के बहुत नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इना बचन का उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है।

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत सब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदा सब बाणी विच कहिंदे ने

अच्छा उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहंदे ने, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू, नाम जपण वालियां नू, सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहंदे ने, मान ना कीजे शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, किड्डी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मालका कर कृपा मेरे पे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरुदा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा च तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो अंग ने मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चातक ने पपिए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है। जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह, मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़े।

जिन्हों गुरु पूरा मिल गया। संत अत्तर सिंह मस्तवाणे वाले बैठे सी जवान च, कोई शख्स कुछ बोल के हटिया, विचों कोई दूसरा बोल पिया कहन लगा महापुरशो इन्हें बोलन वेले फलानी गल

सोचता रह जाना कि दुनिया की कोई वस्तु नहीं बाबा दीप सिंह दे दर तो जिदी झोली ना भरे। फिर सोचना वा कि बाबा दीप सिंह जी तुसी एक कलगियां वाले पातशाह दे सिख हो, ध्यान देना। वो गुरु किन्ना क पूरा समर्थ होएगा जिन्हें एक सिख नू इन्ना कुछ आख सकना। बाबा दीप सिंह जी ने कलगी वाले पातशाह दे मुबारक हत्थां चो अमृत छकिया। जप सत ते पहरा दिता, सच ते पहरा दिता, गुरु की चाल ते

आसरा त्याग के किसे होर पासे जावेगा, किसे देवी देवते वल, होर किसे दी आशा मन विच रखेगा, कब्रां नू जाके पूजेगा, मणिया मसाणा विच जाएगा। आख्या जिवें बछड़ा अपने गऊ अपनी गऊ मां दे थणा नू छड के दूसरी गऊ दे थणा ते जाके जे दुध मंगेगा तां उसनू कदे उत्थों दुध नहीं मिलेगा, लत ही मिलेगी। सात संगत बोलो श्री भाई गुरदास जी कहंदे हन, इसे तरह जे अपने गुरु दा ओट आसरा छड के जे दूसरे किसे पासे जावेगा तां भाई कदे पूरी नहीं पवेगी तेरी। बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरा वाले आप क्या करते सन, जे सिख दी गुरु ग्रंथ साहब ने पूरी ना पाई तां फिर कोई पा नहीं सकदा। सात संगत बोलो श्री सिख दा गुरु है गुरु ग्रंथ साहब, सेवा कर तां गुरु ग्रंथ साहब दी, और जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब दी सेवा कीती सारी सारी रात नाम जप के गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी विच खड़ो के बाबा आनंद सिंह जी ने नाम जपया ते फिर गुरु ग्रंथ साहब विचों गुरु नानक नूं प्रगट करके दर्शन कीते। सात संगत बोलो श्री भाई लहणा जी सेवा करके ही गुरु नानक दे कोलों बख्शीशां लै गए, गुरता गद्दी लै गए। गुरु नानक दे घर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती तां उहदी मनोकामना पूरियां हुई, जे गुरु नानक दे घर दी सेवा किसे ने निष्कामता दे नाल कीती तां गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। सात संगत बोलो श्री भाई लहणा जी निष्कामता दे नाल सेवा करदे दिन रात, फिर ओ दिन आया जदों गुरु नानक ने अपने हिरदे नाल ला के आख्या लैणिया भाई तू लेना है ते असी तेरा देना है। इस वास्ते आज तो अपने अंग ना ला के गुरु नानक ने लेने नू अंगत कर देता, अपनी जोत गुरु अंगत दे हिरदे विच रख दिती ते आख्या हुण तू खंडूर विच जाके संगतां नू नाम जपाओ। गुरु अंगत देव जी खंडूर दी धरती ते बैठे हर वेले यही अरदास करम, सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोई, गुरु नानक जदों दा मैं तेनू वेख्या तेरी सेवा कीती है हुण मैनू अखां विच होर कोई जचदा ही नहीं। सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोई, नानक तांका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए। रोज अमृत वेले उठ के साहिब जी उथे संगतां नू दर्शन देंदे हन, नाल कीर्तन नाल जोड़दे हन। एक दिन अमृत वेले दा समा गुरु अंगद दे पातशाह खंडूर दी धरती ते बह के दीवान सजाया, ए शब्द गा रहे सेवी साहिब अपना वरना जाचो कोए, तां भाई बाला गुरु अंगद दे पातशाह दे दर्शन करन आया के मैं वेखां ओ कौन पुरख है जिसने गुरु नानक नूं भी जित लिया है, जिसने गुरु नानक दा हिरदा जित लिया है। जदों भाई बाला जी आए दीवान विच साहब जी शब्द नाल गा गा के झूम रहे, और जिस वेले गुरु अंगद दे पातशाह दी अखां खुलदियां सन भाई बाले ते जा पैंदियां। साहब जी ने थोड़ी देर बाद अपने कोल बुलाया ते पुछया भाई कौन है कित्थों आए हैं। भाई बाले ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मेरा नाम भाई बाला है और मैं सारी उम्र गुरु नानक पातशाह दे नाल रह के उन्हां दी सेवा कीती है। जदों गुरु अंगद दे पातशाह ने सुनिया भाई बाला उठ के खड़ो गए, हिरदे नाल ला लिया, आख्या तू बाला है मेरे गुरु नानक दा साथी। कोल बिठा लिया आख्या सुना ना गुरु नानक दियां सिफतां गुरु नानक दियां साखियां। जिवें जिवें भाई बाला गुरु नानक दियां सिफतां साखियां गाउंदा है गुरु अंगद दे पातशाह दे नैन कटोरे वस रहे हैं। जदों कोई प्रीतम दी अपने प्यारे दी गल सुनावे तां उहदी याद विच फिर अखां विचों नीर बह तुरदे हैं। सत संगत बोलो श्री
कुछ दिन भाई बाला उथे रहा ते साहब जी ने लिखारी दे के भाई बाले को जन्म साखी लिखा ली गुरु नानक दी। एक दिन भाई बाले ने आख्या गुरु अंगद देव पातशाह नु गरीब निवाज मेरे मन विच एक संसा है निवृत करो। साहब जी कहन लगे बोल भाई बालिया गुरु वल संसा रखना नहीं चाहिदा कदे क्योंकि जिन्हां दे हिरदे विच संसा रह जांदा है उन्हां दा हिरदा मैला हो जांदा है संसा कट अपना। ता भाई बाले ने हाथ जोड़ के आख्या कि सारी उम्र गुरु नानक दी सेवा मैं कीती गुरु नानक पातशाह दे नाल मैं रहा ते जदों गुरता गद्दी देण दा समा आया ते आप नूं बिठा दिता गद्दी ते। गुरु अंगद देव पातशाह कहन लगे भाई बालिया तू गुरु नानक नूं की जान के सेवा कीती तू गुरु नानक नूं की जान के पूजिया। भाई बाला कहन लगा मैं गुरु नानक नूं पूर्ण संत जान के पूजिया। ता गुरु अंगद देव पातशाह कहन लगे भाई बालिया फिर गुरु नानक ने तेनूं पूर्ण संत ही बना दिता। भाई बाला कहन लगा मैं तां गुरु नानक नूं संत जान के पूजिया ते तुसी की जान के सेवा कीती तुसी गुरु नानक नूं की जान के पूजिया। तां गुरु अंगद देव पातशाह दियां डुब डुब अखां भरियां आख्या मैं गुरु नानक नूं पार ब्रह्म परमेश्वर जान के पूजिया। भाई बाला भी रो पिया कहन लगा फिर गुरु नानक ने तुहानूं पार ब्रह्म परमेश्वर दा रूप ही कर दिता। सात संगत बोलो श्री सतगुरु नूं जेहा को कर जाने तेहा फल पावे सोई। गुरु नूं जेड़ा कोई जिस भावना दे नाल पूजदा है उतनियां को बख्शीशां गुरु नानक दे दर तों लै जांदा है। भाई भाई लैणा लै गया लै गया भाई लैणा और फिर गुरु अंगद देव बन बैठा जिदे हिरदे विच गुरु नानक दा निवास है। ते हुण गुरु अंगद देव पातशाह गुरु नानक नूं ही नानक नानक गाउंदे होए की आखदे हैं।

सब तन का गुण सतगुण गुण सतगुण चित मिल हर पड़ता भजना तू कर्म कर्म समर्पण कर मैं तुझ बिन अगर

वही नदी के किनारे थे, दुनिया उतारने वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

कि कोई मेरे मन विच तांग होवे कि मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्हां ने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे होए ब्यासा नदी ते जाना, उथों गागर दी जल भरनी। 72 साल दी उम्र है, रात पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे ते जदों तीजा पैर हुंदा

साहिब श्री गुरु रामदास जी राग कल्याण भुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन दी दशा दा बयान कर रहे हन। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, विखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोना दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया वड्डे हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे के किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन, द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन, अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन, सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनों सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ए सदाउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हैं।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया दो नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण, दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन

दास जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जाता, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जाता है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के, मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लैके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होने दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली बारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया, देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लै के पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लै के सिंघासन वल वधे।

मत अनुसार भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता बारे फरमान कर रहे हैं। कहंदे ने सिंघासन ते बिठा के सुदामे नू जोड़ दिता गुरु दे शब्द नाल। गुरु दे शब्द नाल जो जुड़िया मानो दसम द्वार पहुंच गया। द्वारका नगरी दे मालिक ने नौ द्वारियां विच्चों कढ के दसम द्वार पहुंचा दिता जिथे उदे सारे ही माड़े कर्म जेड़े सन वो नाश हो गए। भाई साहब भाई गुरुदास जी फरमान करते हैं

गुरु की गल, सिख का जीवन कहा करन, जो गुरु का हुक्म है वो करन, जो भी बाणी नाल जुड़ना, सिमरन नाल जुड़ना, श्वास श्वास जपना सतना, जिन्होंने गुरु के हुक्म अनुसार अपने मन नूं सिमरन विच जोड़िया, प्यारी साध संगत फिर वाहिगुरु करदिया करदिया सिमरन करदिया करदिया ऐसी अवस्था बन जाती है, पहला वाहिगुरु रसना से वसदा, फिर मन च वसदा, फिर रोम रोम च वस जाता है, खुश हो जाता है। वाहिगुरु शब्द जो है गुरु का मंत्र,